0: हला हे दिलिया नी हमाला दिले मेने ई खाती हाले हमाला दिले आले खाती हला हे के दिलिया मेना बाहले मेने वेले वसुत बाण खडा वाली बा हे मेने ले थेमा खाती लाले दिलिया सोए नवतल दिन अशुद्ध बाल येशु स्वास के नाम में फले आऊ
1: देखे रामा खाती दा रे तेरे बे
0: ई हमाला के दिया ले हमा
1: तेरे बे दे दे रे वाती दा हालेलुया
0: इतेलिया माला माती हाना हेले केती लिहा मेले माती लिया ले ओबरे सुति वेवा स्वामी इन वहांस ओबांस उदाउ करन ने किने के

याज्ञा करम है सर्व बलदारियो अनाति अनंत दिव्यनी मोक्षांपन मातावन कान्यमार्य तुमांगे गतहा प्राण्य उबगे श्री कुमार अटोबिन वासस्थान अक्वन लिस इस्प्रीतु सांतु अरमीन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतु सीकरण तुमीगे दयाबरे आज्ञा बला अपटे देन्नाव नपुरुवलिन्हा अनवर्त मरनेन गलवेम सलसो मेनव मे की दे अपगे स्वामियो जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपट लबेवा आमेन।

याज्ञा करम है सर्वबलदारियो अनाति अनंतो दिव्येनी मोक्षां पन मातावन कान्यमारिय तुमानगे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतटु सिहि करनो तुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसो मनव මේ කී දේ අපගේ ස්වාමී වූ ජේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසාම අපට ලැබේවා ආමෙන්